0: Gurjeet Suri. Call Gurjeet Suri. 416-627-3111. 416-627-3111.
1: Khushiyan de sang.
2: सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई कॉल करो 416-627-3111 416-627-3111।

सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल। अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई कॉल करो 416-627-3311 416-627-3111।

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। मैं हूं तुंदी अपनी आरजे नेहा शर्मा, डोगरी सोल तुंदे आस्ते लेई आई आई पेशकश डोगरी रेडियो दी। ती मैं आज तुंदे कन्ने अपने एक मने दा बवाल कड़ना चाहनी हूं। जो ना मैं बड़ी के चीज चुभदी है, बड़ी के अखर दी है, कदे कदे ते मैं निखरे भी ओढ़नी हूं जदों मैं गल दिखनी हूं, ते कदे कदे चीजा मेरे भी हाथ च नहीं होंदियां, ते बस मन महसूस करिए मैं बड़ा ही दुख होंदा है। मैं सोचा आज की ना मैं तुंदे कन्ने साझा करा, ते मेरे जेड़े सवाल न, की पता तुंदे कन्ने गलबात करदे करदे मैं उन्हें सवाले दा जवाब भी थोईया। पहले तो सुनो आज दे एपिसोड दा ये पहला गीत, ओदे बाद मैं अपने मन दे बवाल तुंदे कन्ने कढ़नी आं।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मता मता स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। ते अस गल करा दे है मेरे मने दे बोले दी, ओ जेड़ी मेरी बड़ी किचे चुभदी है, दुखदी है, ओ गल। ओ गल ए है दोस्तों के साड़ी उन संस्कृति च पता नहीं के कमी रही दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हा। पहले अस बड़े बुजुर्ग दा बड़ा मान सम्मान करते है, टब्बर च उन्हें बड़ी इज्जत दिंदी जांदी है, पर हुन मान सम्मान ते छोड़ो, उन्दे कन्ने पूरा दिन बोलने वाला भी कोई नहीं होंदा। ते गल मी बड़ी गै अखरदी है, बड़ी भैड़ी लगदी है मी गल। पता नहीं दोस्तों, एक कसूर उन वेस्टर्न कंट्रीज दा आए दा इफेक्ट है कि साड़ी कोई पेरेंटिंग च, साड़े संस्कारें च कोई कमी रही दी गई है कि अज बड़े बुजुर्गें दा बड़ा गै तिरस्कार होंदा है। मैं दस ही नहीं सकनी तुसें कि मैं किन्ना बुरा लगदा है। मैं मन गे मन रोई उठनी हाँ मैं जदों कुसी बुजुर्ग का तिरस्कार दिखनी हाँ, वो अपने के टब्बर को। पर जदों मेरे हाथ च होंदा है तो मैं समझानी हाँ टब्बरे की, मैं समझानी हाँ उन्हें लोकें, पर कदे कदे ये नया भी होंदा है कि मैं आपे गे चुप रोना पौंदा। समा गे हो नया होंदा। तुस सुनो अगला है गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। तुसी दोस्तों पता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिहाड़ा मनाया है। उन्हें भी एक डे इंट्रोड्यूस किया है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस। इस ध्याड़े का मनाने का इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही पर्पस हाँ कि जेड़े साडे एल्डर हैं, बड़े बजुर्ग हैं, उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होआ करते हैं उसके बारे च लोगों को पता लगे, लोग अवेयर होन ते वो चीज़ कुदे ना कुदे रोकथाम की जा। तो जिहड़ा दुर्व्यवहार है ये कुदे बाहर नहीं होंदा, ये इत्थे गे घर दे गे अंदर होंदा है। जदों अस बड़े बजुर्ग इग्नोर करने, नैगलैक्ट करने, अपने कामें च बिजी होने, उनकी खैर खबर तक नहीं लैंदे, वो बेचारे पूरा पूरा दिन कल्ले घर बैठे दे रोंदे, करने कोई काम उनके कोल होंदा नहीं है, शरीर उनका बीमारियों करने वो परेशान होंदे, तो उत्थे गे दुआ अस उन्हें इग्नोर करिए, एक मैंटल प्रैशर भी दें, तो बल्ले बल्ले डिप्रैशन च कन्वर्ट हो जाता है। ये सच है दोस्तों। हुन टाइम आता है अगले गीत का।

0: सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली का विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 905-459-5533
2: 905-459-5533
1: PNJ Spring Wheel Alignment।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
3: रिच पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली.
4: ओ की कर देने तेरे रिच पीपल,
5: तेरे वांग रोज काम ते नहीं जांदे, डॉलर्स नाल डॉलर्स बना देने. चल एक गल दस, तेरा मिलियन डॉलर्स दा कार पेड ऑफ है, की तेनू काम ते जान दी लोड हैगी है?
4: काम ते तो जाना ही पैना, डॉलर कित्थों आणगे?
5: बस यही फर्क है, तू डॉलर्स लई काम करदा है ते रिच पीपल डॉलर्स इन्वेस्ट करके बैठ के खांदे ने. जे तुसी भी ऐदा चाहुंदे हो तां हुणे कॉल करो जसविंदर ढिल्लों नूं 416-278-6869 ते.
4: मैं कल ही जाके आना.
5: रिच पीपल अज दा काम कल ते नहीं छड्दे, हुणे कॉल कर 416-278-6869.

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
2: Punjabi Versa!

आई रियली लव दिस सॉन्ग, बहुत प्यारा गीत है। मैं तुम्हें इस गीत ना छड़ता जा रहा, मेरा नंबर थोड़े सारे को है, किसी भी सज्जन ने कोई बिजनेस मैन वीरों नंबर चाहिए होंगे 6474481000 6474481000। लव यू ऑल, लव यू, लव यू, वड्डा वड्डा यार।

0: 530.ca.
1: वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम मनी मेकर। अज असी तुहाडे लई एक खूबसूरत कोटे लैके आए हैं जिहड़ी कि मुस्कोका दे विच लोकेटेड है। डेढ़ एकड़ तो लैके दो एकड़ दे विच बनी हुई है। 2023 दी बिल्ट है। तीन बैडरूम टू एंड हाफ वाशरूम ने। मेन फ्लोर ते लिविंग डाइनिंग ते फैमिली एरिया ने। प्लस एयरबिन ते पिछले दो साल तो बिजनेस कर रही है। 2025 दे विच $90,000 दा प्लान ने बिजनेस किया एयरबिन तो। सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के उपर बीच है। 15 मिनट की ड्राइव के उत्ते डाउन टाउन हंट्सविल ने। 15 मिनट की ड्राइव से गोल्फ कोर्स है। जे तुसी इस कोटे नूं देखना चाहते हो, इस कोटे नूं बाय करना चाहते हो, राइट वे कॉल 416-265-2222। जे गंडम कॉल 416-265-2222।
2: संसार के कोने कोने विच वसदे पंजाबियों तक विरसे की खुशबू पहुंचाता यह है वतनों दूर रेडियो। दिस इज वतनों दूर रेडियो।
3: वतनों दूर रेडियो विच तुहाडा सारयां दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारयां दा सत्कार करदा है ते सिजदा करदा है कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा जिन्हां ने वतन तो दूर आके इत्थे खुशहाली दे महल बनाए ने ते वतनों दूर सिजदा करदा है उन्हां सारे सिरड़ी इंसानां दा जिन्हां ने इस वतन दी तरक्कियां दीआं कहानियां लिखियां ने। वतनों दूर रेडियो सिर चकाउंदा है उन्हां सारे दोस्तां नूं जिन्हां अपनी कामयाबी दे नाल इत्थों दी धरती ते इत्थों दे लोकां नूं दस्सिया है कि साडी शान वखरी। वतनों दूर हुण कैनेडा विच वसदे पंजाबियां लई पंजाबी संगीत पंजाबी जवान ते पंजाबी विरसे दी खुशबू पहुंचाउण लई लैके आया है वतनों दूर रेडियो।
2: दिस इज वतनों दूर रेडियो।

0: अपना टेस्ट फ्रेश प्रोडक्ट्स एट ऑल लीडिंग ग्रोसरी स्टोर्स अपना टेस्ट बाय समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca

0: Kujore, to ma bayaja chare pase. Tusi bhi aao. 1850 Albion Road in Rexdale. 416213 1165.
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca
4: फगवाड़े दे मशहूर अमित सुधीर स्वीट्स आ गए ने हुन ब्रैम्पटन विच वी लेके मिठाई महाराजा स्वीट्स एंड स्नैक्स
5: ओही फगवाड़े दी ऑथेंटिक मिठाई मशहूर तला

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Canada vich 75 plus locations de naal Pizza Depot leke aaya full on taste da combo. 50 plus toppings de naal banao apna favorite pizza. Try karo sweet chili mango pizza ya shahi paneer pizza.
3: Juicy ka spicy wings, 25 flavors de vich ate Indian style chicken wings bhi try karo.
2: Loaded fries naal butter chicken fries, shahi paneer fries, matlab har bite vich full paisa vasool. Apne nazdeek ki store te jao ya pizzadepot.ca te order karo.
3: Ke je tusi business karna hai te franchisee at pizzadepot.ca te aaj hi apply karo. Pizza Depot, swaad ki chop, toppings non stop.
4: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
5: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
6: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਈਨਸ, ਬੈਨਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜ਼ੋਨ ਸਾਈਨਰਾਮਾ, 1625 ਸਟੀਲਸ ਐਵੀਨਿਊ ਈਸਟ, ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9054585956, 9054589956।
1: यारों के साथ दशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
2: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट, नायग्रा फॉल्स। कॉल 9053580864,
1: 9053580864, Dhaba on the Falls.
3: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji, 647-822-9607, 647-822-9607।
4: जब सब कुछ तुमने पा लिया, लाइफ को बेटर बना लिया, फिर गुड फ्यूचर अनलॉक करो।
5: टांगरी इंश्योरेंस टीम से टॉक करो, जस्ट कॉल 9054051200। टांगरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल ग्रुप की टीम में शामिल एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स दिखाते हैं आपको आपकी वेल्थ का फ्यूचर, एंड एस्टेट प्लानिंग करके आपके आने वाले वक्त को बनाते हैं बेमिसाल। टांगरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल ग्रुप, सर्विंग यू सिंस मोर देन 35 years। For all your insurance and financial needs, just call 9054051200.
4: We calculate and plan, taki zindagi mein ho chain.
6: Looking for a car rental for an insurance replacement, a family weekend getaway, or perhaps a wedding? Visit Zoom Rent-A-Car, the guaranteed lowest price in the GTA. We will beat any competitor's price

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तक गाले कुजोरे तुम्हा भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165
1: और रॉकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca

0: 32, 55, 80, 98।
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 9054502828, 9054502828।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: For advertisements and information,
6: साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551।
7: There is but one God.
8: सतनाम।
7: The supreme truth. The Creator, without fear, without hate, omnipresent. Shall worship the eternal truth.

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू ए कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नू प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-15।